हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरम

मिले तरबतास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हार हार हार रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीव त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा।

जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तोदा पे भावे सोई वरता जी तू आपे करे सो होई तोदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तोदे आपे सिरज सब गोई जान नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचार मैडा साई जो तो भावे सोई थी सी जो तू देह सोई हाँ पाई रहा सब तेरी तू सब नित्याया जिसनों कृपा

शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं चाव पई पौन राक्षस का काटा सीसा। श्री असकेत जगत के ईसा। पोह पन भ्रष्ट गगन ते पई।

तुम्हें छाड़ कोई अबर न त्याहू, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है। ऊजो सदा हमारे पछा, श्री अस्तुज जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता।

दुष्ट अरिष्ट तरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरहो ताके ताप तन कमहरहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई।

को छह करता श्री अस्तो जप है दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बाछत फल पावे सोई, दोख न तिसै व्यापत कोई अड़ेल, सुन गूंग जो जाहे सरस न पावई।

भाई संबत 17 सहस पण जय अर्ध सहस पुन तीन कह जय भादर सुधि अष्टमी रावारा तीर्थ पद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत।

जब तुम करहो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावहेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास राग बर करा सगरी पुरी समेत चा पई जो है कथा सुने अर गावै दुख पाप तेह निकट न आवै विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तार स्तदर तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रागबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

कहो नानक साहब तेरी वडियाई कोई। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठ शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नदावै तहे सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाहियाँ की जोत गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चहु साहब जादिया चालिया मुक्तियां अठिया जपिया तपिया जना नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तेना प्यारिया। सचारिया दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सिस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चराए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म ने हरिया। सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी का वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप। वाहिगुरु काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे पंथ खालसा जी अनबख्शो जी। निमाण्यो के माण नताण्यो के ताण न्योट्यो की ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज। सच्चे पातशाह जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। सच्चे पातशाह जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। सच्चे पातशाह अकाल पुरख शहनशाह जी आप जी का हजूर चरण कमलां पास अरदास बेनती सतगुरु जीओ।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदि नूर अरसो कुरसो चटिए तो दड़ठे सचे पात सा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
2: समय दे चलेंगे है, काल दे चलेंगे, बाकी सब कुछ काल दे चे, समय दे चे, परमात्मा अकाल। ते किधरे ख्याल पैदा हो जाए एक कल्पना ते नहीं तो साहब कहते नहीं मूर्त मूर्तिमान है, खुद ही मूर्त हैगा। जे मूर्त है तो फिर किसे ने बनाया है? तो एकदम सतगुरु कहते ना आ जाओ, नहीं किसे तो भी नहीं जमया, उसनू किसे ने भी नहीं बनाया, उसकी बनतर किसे तो भी नहीं हुई। नानक का प्रभ आपे आप है, अपने आप तो आप ही है, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। तो फिर वो सहभंग है, स्वयं भू है, अगां चल के सतगुरु कहते ने वो गुरु है। गुरु कोई होर नहीं है, परमात्मा ही गुरु है। ये गुरु शब्द भी कल्ला है अपने आप में, गुरु प्रसाद कट्ठा नहीं, प्रसाद अलग है। वो जो एक है वो अंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, वो जो एक है वो करता है, वो जो एक है

अपनी कृत देच व्यापक है, वो जो एक है भय तो रहत है, वैर तो रहत है, वो जो एक है समय तो रहत है और जन्म तो रहत है, मूर्तिमान है और उसने अपनी साजना आप कीती, वो एक सहभंग है, वो एक गुरु है। गुरु ज्ञान, गुरु प्रकाश, वो एक ही ज्ञान स्वरूप है, वो एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु है। बगौर मुताला करिए जिथे सब कुछ ईश्वर तो आया है, ज्ञान भी ईश्वर तो आया, परमात्मा तो आया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मने है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल हुई ने, मैंने उच्चारण की, खुदा दी तरफों नाजल हुई ने, तो इहदा मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई, अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा का हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने, बोल मेरे नहीं ने, जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा जैसे जैसे खसम की बाणी आई है, मैं जगत के सामने रख रहा, मेरे नहीं है। ये बोल सारे खसम देन तो ज्ञान सारा परमात्मा का, ईश्वर का है। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहे है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते, हां मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जियो, यही मेरा गुरु है। इसे तो ही मैं ज्ञान लिया। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न कीता है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है, इतना ज्ञान तुसी कित्थों लिया, किस कोल पढ़े है, किसने सिखाया है। रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है। तो सतगुरु एकदम कहंदे ने, खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साखी दे बोलने, रहनुमाए तो कीस, कंधारी सूफी संत। कंधार विच एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर का, गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक की यात्रा के समय इसे कंधार तो लंघते हुए इसे ही सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 दिन। इसने प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस, थोड़ा रहबर कौन है थोड़ा गुरु। खुदाए मन, जैसे छोटे शब्दों च थोड़े बोलों च उस फकीर ने प्रश्न किया है, थोड़े ही बोलों च सतगुरु जवाब पे देंगे। रहनुमाए तो कीस, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर और कोई रहबर नहीं, मैं सारा ज्ञान खुदा तो ले है। असी पैगंबर गुरु अवतार उन्हानो कहंदे आ जो परमात्मा दे ए बोल सीधे पकड़ लैन, सीधे ही पकड़ लैन, उन्हां दी पकड़ दे सीधे आ जांदे। ते जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन, असी उन्हां नूं भगत कहंदे आ। ए भगत ने, इन्हां ने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलों उपदेश लेके, पैगंबरां कोलों शिक्षा लेके, उन्होंने बोलों नूं जीवन का आधार बना के परमात्मा की प्राप्ति की थी भगत। ये सीधे परमात्मा के बोल नहीं पकड़ सके, जिन्होंने पकड़े सन उन्होंने जुड़ के उन्होंने मन के ये पार उतरे। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी उन्होंने कहने भगत, इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास से
अवतार दे हर बोल देते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा देते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल देते भरोसा कीता। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा देता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिना दी पकड़ दे चा गए खला दे च, और ए बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था, हर वक्त परमात्मा तो ए बोल आ रहे ने, हर वक्त गुरु नानक दी पकड़ दे चा गए, कृष्ण दी पकड़ दे चा गए। और महाभारत दे मैदान जंग दे च ये जो गीता है, ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे च जंग दे च निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहिंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने। वाकई गीता अमिट है, क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, और वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन, भुलेखा पै गया अगे चल के, ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े है ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप देच उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुवालता पै गया, परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, ते कृष्ण दे इना बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास। तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए, कुदरती गल अपनी रंगण चाड़ जाण गए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे, ते हुण कोई उस दे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दी। एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले, अर्जन नूं समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकदे सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है, उथे उथे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदाने जंग देच भी कहण की जरूरत है, ए अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। तू जो ये कहना है, ये मेरा गुरु, ये मेरे भरा, इन्हों मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता। तू स्वभाव का क्षत्रिय है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा ता भी तेरे दिल दिमाग देते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। तू करता नहीं है, निमित्त है, और अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग देच भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनु समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा कर्तापन तेरे नाल है, तो तेरा त्याग भी तेनु परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनु ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा कर्तापन मौजूद होवेगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ दे च आ गई, उन्हें सुट्टे शस्त्र फिर चुक ले, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दिच आ गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सिद्धा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राहीं पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत। अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे आ, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे चोए ने। अवतार हर वक्त
पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने। कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अवमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए, ओ जैसे बहुती गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह दा घोर पाप किसे अवतार नु जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नु सुणदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, किथे जगत अवतारा दे बोल नु पकड़दा है पूरा, थोड़े जिया फिर भी पकड़ देन उहदे नाल रोशनी हो जांदी, उसने नाल काफी ठरम्मा हो जांदा है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखदे ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि विच अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तो फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख के बचना नु पकड़ता है और जगत दे सामने रखता है। अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हां दी पकड़ दे चा जांदे ने, वो भगत, वो गुरमुख, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं, ईश्वर ही गुरु है। वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नु जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने प्रसाद है, गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह देने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नु खोलना चाहना ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहदारी गुरु चाहिए के नहीं, कौन दसे कदी देही भी गुरु आंदी है, अज है ते कल नहीं। इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है, गुरु मर जांदा है, ते जो मर जांदा है ओ गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है, उपदेश नो हिरदे च वसाओगे कि उस देही नो? जे आखो देही नो हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं, की लोड़ है। ते जे उपदेश नो हिरदे च वसाना है ते ताई हिरदा बदलेगा, तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सम्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़े दी कदर, कपड़े दा सन्मान, भाई फलाने दे कपड़े ने, फलाने दे वस्त्र ने। जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे आं, गुरु ग्रंथ साहब दे रुमाले ने, पर हुण मैं अर्ज करा कि अखर ए भी रुमाले ने, कागज ए भी रुमाले ने। अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा, होरे दे चों गुरु नूं कढ़ना पैंदा, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा। गुरु ते हर वक्त बोले च, ये भी मैं अर्ज कर दे। बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारां लोग भुल जांदे सन, उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन, तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लबाणा आया, इहदे कोल अख सी, कहिंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दिते। चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे, गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन, किस तरह सच्चे हो सकदे? मक्खण शाह लबाणे दी सोच नहीं,
बकाले रिच एक हलवाई तो पुछदा इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारस होवे। उस हलवाई ने कहा सोडी बंश दा एक तेगा कमला है, गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है, एक तेगा कमला है भोरे च रहिंदा है, भोरे दे च है, बाहर नहीं आउंदा। वो जड़े बाई सन लिशके पुशके बाहर बैठे सन गदियां ला के, ये भोरे च गया है, दर्शन कीते ने, बोल सुने, उपर चढ़ के कोठे ते कहिंदा है गुर ला धोरे, गुर ला धोरे, जो मैं बोल सुने ने ये परमात्मा ईश्वर ने। गुरु ते हर वक्त भोरे च है, ये भी मैं अर्ज करा, अखरां दे भौरे च कढ़ना पैगा, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। इन्हां अखरां दे भौरे च कोई रब्बी जोत नूं कढ़े, कोई गुरु नूं प्रगट करे। जीवन दे च परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है, इह वी अर्ज मैं करां, ना किधरे गुरु मिलदा है, ना किधरे इस तरीके नाल परमात्मा मिलदा है, प्रगट करना पैंदा जीवन दे च। अपनी हालत इस ढंग दी बनानी पैंदी है कि गुरु प्रगट होवे, अपनी हालत ऐसी बनानी पैंदी है कि परमात्मा प्रगट होवे। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। इस बाणी नु सुनो, शब्द नु सुनो, ते जैसे सुन के शब्द अंदर वसेगा, बाहर परमात्मा प्रगट हो जाए, सारा जगत परमात्मा दा रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ए विश संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश कीता, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु नु सुनिया, इधर अखां ने परमात्मा वेखना आरंभ कर दिता। जे अखां नु अजे परमात्मा नहीं दिखाई दिता, तो अखां ने अजे गुरु रूप परमात्मा नु सुनिया भी नहीं, क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ही ने। परमात्मा दे बोल ही अखां खोल सकते ने, जगत दे बोल, संसार दे बोल साड़ी अखां नहीं खोल सकते, ये भी मैं अर्ज करती। पर अखां खुल सकदियां ने अगर साड़ा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, और जिस दिन सुनेगा मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुने। एक भी सिखिया सुन ली, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया, तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पाएगा। इस तरीके नाल सतगुरु कहिंदे ने ओ गुरु है, अखीर दे च कहिंदे ने ओ प्रसाद है, ये अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उदी रहमत नाल बने, तेरे प्रयास नाल नहीं, उस दे प्रसाद नाल। अपने आप दे च ए प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इस दा खुलासा कल दिन दे समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है, साड़ी मेहनत नहीं, उदी रहमत है, साड़ा प्रयास नहीं, उदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनु मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनु प्राप्त कीता है, कहिंदा नहीं तू मिलिया है, तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं, तू मिलिया है, मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास कर देन, अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्ने नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल देन, बड़ी मुशक्कत कर देने, पर मुशक्कत कर करके एक ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा, बस इन्नी गल। मेहनत कर करके एक ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा, प्रयास कर करके एक ही पता चलेगा एक गल दा कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलदा है उदा प्रसाद,
ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਜਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਅਚਨਚੇਤ। ਗਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਆਇਆ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
मैं इतना अर्ज कर दिया जिवें आदमी पुत्रां कोल बैठदा है, मित्रां कोल बैठदा है, पत्नी कोल बैठदा है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठदा है, जैसे मित्रां कोल बैठदे हां, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जिहा मैं अपने अनुभव के आधार से कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा तां भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह के जो है बनन। खैर, बाकी विचारां कल तुहानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसियां सजावां देंदा है, ऐसियां करणियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है, यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज कर लेना, ना जगत किसी नु कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंदे ने, साडी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंदे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंदे हां। परमात्मा दुख देण वाला नहीं है, अगर दुख देण वाला है तो फिर उन्हूं रहीम कहण दी लोड़ नहीं है, उन्हूं करीम कहण दी लोड़ नहीं है, उन्हूं रहमान कहण दी लोड़ नहीं है, उन्हूं प्रसाद कहण दी लोड़ नहीं है, उन्हूं कृपालू ते दयालु कहण दी लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालू है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदे ने, सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा 80 साल दी उम्र च इसने ए बोल रचे ने। कहिंदा है तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रखिया, 80 साल दा ते मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल दी जिंदगी दित्ती ना, ते मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने। सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम कर द, एक फकीर दे मुंह ए बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती दा फकीर सी। ईरान दे जितने फकीर होए ने उन्हां दे च एक चोटी दा फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा कीते, शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह दे बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा कीते, उन्हां दे चो इक ए है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान दी मिट्टी ने ऋषि पैदा कीते, मुनि पैदा कीते, ज्ञानी पैदा कीते, भगत पैदा कीते, संत पैदा कीते, अवतार पैदा कीते, ईरान दी मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा कीते, सूफी संत पैदा कीते। उन्हां दे च हाफिज दा अपना एक खास नाम है। कहिंदा सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद, ऐ खुदा जे 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत होई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा, अगर तू 100 साल दी मैनू जिंदगी दिती, क्यों? ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लैना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह, तोलांगा एक पलड़े च रखांगा 100 साल दे गुनाह, और दूजे पलड़े दे च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत, एक पल दी बख्शिश, एक पल दी कृपा,
कहिंदा मेरा अनुभव कह रहा है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है कि मेरे 100 साल दे गुनाह ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एवें मैं हिरदा बोझल पे करदा कुछ भी नहीं। कृष्णा रहमते शाहां का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुना मैं भी गुनाहगारों में हूं। तू इतना बख्शन, इतना दयालु। ये फकीर कहिंदा मेरे अनुभव च आ गई है गल, बाकी दे 20 साल मैं रहा ते पाप करांगा। पर मैं अर्ज करा जिस दे उते इतनी रहमत हो गई है, जिसनों इतनी रहमत दिखाई दे रही है, क्यों पाप करेगा? उस तो क्यों पाप हो जाएंगे? इसनों इंज भी लेना, किधर इंज ना लेना कि चलो बड़ा कृपालू है, कल तो सारे ही अनर्थ कर दे। किधर इंज पुठी गल ना ले लेना, सिलसिला उल्ट ना ले लेना। ये फकीर कहिंदा सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वा हम कर दे। ऐ खुदा, बीती जिंदगी मैं गुनाहां च बतीत कीती है, जिड़ी रहिंदी है। अगर तू मैनु 100 साल तक जिंदा रखिया गुनाह करांगा, फिर 100 साल दे सारे गुनाह कट्ठे करके मैं एक पलड़े च रखांगा, तराजू पुराना एक पलड़े च रखा, ते दूजे पलड़े च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत। ऐ खुदा, थोड़ी बहुत इबादत करके मैनु इतना पता चले है, तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वास्ते जब वाहेगुरु जपना होवे, कीतियां या गलतियां दा अफसोस ना करियो, वाहेगुरु ही जपो, उसनों ही जपो। अगर कीतियां गलतियां दा अफसोस पैदा होया, तो कई लोग ते इतने निराश होंदे ने, लै अमृत साडे हिस्से च कित्थे च, असी कित्थे नाम जप सकदे। ये पता है क्यों निराशा? कीतियां या गलतियां सामने आंदियां, पर ना रख पुरखा कीतियां या गलतियां नो, इतना बख्शिंद है, इतना दयालु है, उदी एक पल दी रहमत सब कुछ धो देंदी। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक चिंगारी लखा मन लड़कियां जो है साड़ के स्वाह कर देंदी है। उसकी पल भर दी रहमत एक निक्की जी चिनक तेरे करोड़ा पापा नु नाश कर देगी। तू एक चिंगारी ते पैदा कर अपने आप, तू इतना ते भरोसा कर उसते। ओ रहीम है, ओ रहमान है, ओ प्रसाद है, ओ करुणाकर है, ओ दया दा सागर है। इस वास्ते प्रसाद ते गल गुरु नानक ने खत्म कीती, एक ते शुरू कीती, प्रसाद ते समाप्त कीती। तू प्रसाद है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है। इसकी जड़ी वजाहत जिस ढंग नाल गुरबाणी च है, कुछ बुद्धि अनुसार मैं कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगा। अज इतने विचारां सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। रोज आप समां कढ़दे रहे, इत्थों दे सारे मुखी सज्जणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद, ते सेठी साहिबणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद। हर साल मैनूं याद करा देंदे ने इत्थे आवणा, और बने हुए प्रोग्राम नाल इत्थे 2 हफ्ते हाजरी भरनी है। सतगुरु दी रहमत कीता होया वादा निभ गया, सतगुरु दी रहमत बख्शिश। कल फिर थोड़े चरण परसांगे, फिर मैं सारिआं दा धन्नवाद करदिआं होया इत्थे समाप्ति करदा। दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दी कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया है, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है, शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया हुआ संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लैंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए ते कहीए बाहर नहीं कढ़ना, तां वी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए ते फिर अंदर ना लै जाइए, तां वी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियां ने यह तत् कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उस दी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप विच है। पर अंदर दा साडा की परिवार है, इस दी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भ्रमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप विच तैयारी करन लगे, तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आपनू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगन, थोड़ी पत्नी भी हैगी, और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण किए ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने आपने

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हों सारिया ही दुखों का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करते हैं सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकते। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਕਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਤਾਜ ਭਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅੰਤ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ਅਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਵਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਤਿ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤੇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਅੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰਾਬੇ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੋ ਕਰਣਾ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਸਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਰ
0: ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ सत सेवदार
1: दर्शन सत सत एक नहार
0: नाम सत सत ध्यान हार
1: आप सत सत सत धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा ते समाहे समाना
1: बस माहे ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: पूजा भुजन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रपालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत रखै
0: ताकि कदमित कोई न लखै
1: आपके सेवक को न पहुँचै
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखै
0: भस्म करै लस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव प्रथे जात
1: मारे न रखै अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: आहे सोच कर हेरे प्राणी
0: अपना रख प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अमृत मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने
1: ऊठ बैठ सोबत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियानक सगली छाट
0: जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गावष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार के हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इन्हें कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: बीस विश्व गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
0: नानक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश भरम
1: सह सियान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: वर्षित चरणगत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर बचन कर्म आगाने
0: मन संतोखा तंपति आने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए
1: के पाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: आत्मा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चालै बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: तबरो पाप सब मीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उर तारो,
1: करुण कान सो प्राप समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर बथ,
1: केहु तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठतावे,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित पांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अनक उपावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आ बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: यत कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: हत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशत नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: गल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बिना बो डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सब दरगाह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अमदिन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच पुन्नी सरदा सब पूरी,
0: रब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरै जे काल न पाने,
0: सोको बिसरै जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरै जे सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरै जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरै जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सोक्यों बिसरै जे बिख ते काटै,
0: जन्म जन्म का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरह नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो नाश,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों पेख दर्श सुख होए,
0: मन पिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बढ़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, आपन किया नानका आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते के होता
1: जब धारी अपन सुन समाध
0: वैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चेहन जापत
0: जब हर किसो को कसै व्यापत
1: जब अपन आप आप आर ब्रह्म
0: मोह कहा किस होवत भरम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: तब बंध मुगत कहो किस कहो गनी
1: जब एक ही हर अगम अपार
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई
0: जब शिव शक्त कहो गित ठाए
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरे
0: तब कवन न डर कवन कत डरे
1: अपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकुर एक में पार
1: अवनासी सुख अपन आसन
0: तब जन्म मरण कहो कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप ही अचरजा
0: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
1: जय निर्मल पुरख पत होता
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शल शिदर लगत कौ कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसे भूख कवन तृप्तावे
1: करन करावन करने हार
0: नानक करते का नहि समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेदक देव कहा को चीन
1: जब अपन आप पुर धारे
0: शगन आप शगन कहा विचार
1: जय अपन ऊच अपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद
0: नानक अपनी गत जन हो
1: जय छल अशेद अभेद समाया
0: वहाँ कसे प्यापत माया
1: आप उसको आप ही आदेश
0: गुण का ना ही प्रवेश
1: जय एक एक एक भगवंता
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पतियारा
0: जय कौन कथे कौन सुनने हारा
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा
0: नानक आप उसको आपे पहुंचा
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार
0: गुण मैं की नो विस्तार
1: पाप पुण्य तह पई कहावत
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
1: काल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै भार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार की उपख्यान
1: अपन खेल आप कर देखे
0: खेल संकोचे तो नानक एक
1: जय अवगत भगत है आप
0: जय पसरे पसार संत प्रताप
1: तुम पाप का आप ही धनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौतक करे अनंत जोज
0: आपे रस भोग निर्जोग
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
1: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार राष्ट्रपति
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे एक आप विस्तार
1: श्रेष्ठ उपाय
0: अपने भाने लय समाये
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
0: अपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
1: जी जंत्र सबता के हाथ
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोई न मारे
0: सो मुह आज समन बिसारे
1: सच अवर कहा को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय
1: की युक्त जान के सब हाथ
0: अंतर बाहर जान साथ
1: गुण निधान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलहार
1: पूर्ण पूर रहे दयाल
0: सब पर होवत कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: रत पाले जी अनुभव भांत
0: जो जो रचियो सो तिस ध्यात
1: जिस भावे तिस लय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया
0: करन हार नानक एक जाने
1: जन लागा हर एक नाई
0: जिसकी आस न पृथ्वी जाए
1: सेवक को सेवा बन आई
0: हुकम बोझ परम पद पाए
1: इससे ऊपर नहीं भी चार
0: जाके मन बसया निरंकार
1: बंधन तोर भय निर्वैर
0: हर दिन पूजा गुर के पैर
1: हे लोक सुखी परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साथ संग मिल करो आनंद
0: उनका वो प्रभ परमानंद
1: राम नाम तस करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उधार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: प्राण तरन का यह स्वाव
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा
0: हटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: उपदेश हृदय बसावो
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: हलत पलत दो लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: मन बसे ते साच परीखिया
1: मन तर नाम जपो लिब लाए
0: दुख दर्द मन ते पहो जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगह निधह खेप तुम्हारी
1: एक टेक रखो मन माहे
0: नानक बहुर न आवे जाहे
1: इससे दूर कहाँ को जाए
0: उबरे राखन हार ते आए
1: निर पहो जपे सकल पहो मिटे
0: प्रभ कर पाते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटे हंकार
0: इस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्ज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: भर सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल
0: ताके निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर ध्याया श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
0: हर कृपा ते संत भेटिया ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਨ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਮ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਮਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉਂ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀ ਹੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਏ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਮੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਬੋਤ ਬੋਤੇ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੋਹੇ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ

जितने मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, जितने जैन मंदिर ने, जितने बौद्ध मठ ने, जितने सनातन मंदिर ने, जितने चर्च ने, जितने सिनेमाहॉल ने, नए धार्मिक मंदिर, और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर, हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आता, नहीं आता। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, होंदा ते है चंदन दा बूटा, पर हर जगह नहीं होंदा, हर जंगल दे च नहीं होंदा। होंदा ते है केसर, पर हर जगह नहीं आउंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है, कश्मीर दे च आउंदा है, एक अद मुलक होर, बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बोके वेखिया गया है, नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बोके देखिया गया, नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देखिया गया, नहीं होया। बीच के देखिया गया, नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नूं जिहड़ी सड़क जांदी है, उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश, उत्थे आउंदा है, और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत, होंदे ते ने धार्मिक मनुख, गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर, हर जगह नहीं आउंदा। होंदा ते है चंदन, हर जगह नहीं आउंदा। होंदे ते ने हीरे, पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत, हर शहर दे च नहीं आउंदे। हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे च धनवान होंदे ने, कारोबारी होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, हर शहर दे च दार्शनिक, फिलोसफर, राजनीतिक होंदे ने, हर शहर दे च संत नहीं होंदा, भगत नहीं होंदा। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं होंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना, हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, दार्शनिक फिलासफर होंदे ने, हर शहर दे च कलाकार होंदे ने, हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, चोटी दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं, जितनी अकल दी गल चाहिए धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होण गए, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा, बहुत घट आउंदा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत दे च बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं, ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा, किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा, बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा। हुण होर भी मैनूं कहण लेना, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। बहुत सारिया धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है, धार्मिक नहीं है। कारण जब प्रभु की समझ नहीं ते गुरु की समझ नहीं, तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है,

समस्त पराजन सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम देवला काम निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामित्र भंगी।

का खाई हाथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पहरे हुए प्रवान मिले धल पुजे प्राण नील वस्त्र पहरे हुए प्रवान मिले धल पुजे प्राण अपाख्या का कुटा बकरा खाना चौंके ऊपर किसी

शीघ्र ही गुटका फड़ लो हाथ में, चौंकड़ी ला लो। जब कारोबार करते हैं तो मन ये विचार आई है नाम जपन की, समन करने की, वाहेगुरु की, करी जाओ उस वेले शीघ्र ही। ये ना करो कोई टाल फलो कि कर लाँगे वेले होके करांगे। तो सब कहते बिलंब धर्म कभी भी देर नहीं करनी चाहिए शुभ कर्म करने तो। हाँ देर करो जे तुहाडे मन च कोई माड़ा फुरना आया है, भैड़ा फुरना आया है, बिलंब पापन। जे कोई पाप करने वाला किसी ना हेरा फेरी करना करने वाला फुरना आया ना तो फिर देरी ला लो, शायद हो सकता तुम बाजा मुड़ के तुहाडा फुरना ना उफरे माड़ा। सतगुरु इस करके कह रहे कि भाई परमात्मा वाहिगुरु का जिहड़ा नाम धन दा अपने पल्ले खर्चा बन जिहड़ा तेरे जीवन रस्ते विच काम आवेगा ते टाल पटोला ना कर। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चलै हर नाले। जिहड़े हर परमात्मा वाहिगुरु दे संत जन हन उह सदा परमात्मा वाहिगुरु दा जाप जपदे हन, उहदा नाम जपदे हन हर वक्त ही। उठ बैठ सोत नाम कहो नानक जन के सदकाम। हर संत चले हर नाली। ऐसे जिहड़े सतपुरश है उह सदा परमात्मा अकाल पुरख दा नाम जपदे सिमरन करदे हन, जिहड़ा उहनां दे नाल जांदा है। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली। जिन्ना संत जना ने प्यारे गुरमुखां ने गुरसिख ने परमात्मा वाहिगुरु का नाम जपया सिमरन किया है, गुरुदेव देह नूं अपने हिरदे च ग्रहण किया है, गुरु के दसे विदेह के अनुसार उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना की सिमरन किया है। जिन हर जपया से हर हो, परमात्मा वाहिगुरु का रूप हो गए हैं, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु च एकमिक हो गए हैं। जिहड़ा तरह तरह के चोज तमाशे करने वाला परमात्मा अकाल पुरख जिन्हें इस सृष्टि की सिरजना की हुई है, जिस परमात्मा ने यह सृष्टि की सिरजना करके ये खेड खिलारी हुई है, ये जो परमात्मा ने अपने चोज तमाशे करने वाला जिहड़ा वो परमात्मा वाहिगुरु मिल जाता है, जिहड़े इस परमात्मा वाहिगुरु का नाम जपते सिमरन करते हैं तो वो वर्गा हो जाते हैं, वो अभेद हो जाते हैं। फिर उन्होंने परमात्मा जो फर्क रहिंदा नहीं।

हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर रहमत कर कि मैं दास नू सेवक नू साध संगत विच मिला देवो तो मैं सदा साध संगत विच टिकया रहा तेरी साध संगत मिलिया रहा तो सदा तेरी साध संगत की जिहड़ी चरणा की धूड़ बनिया रहा यह बख्शिश करो जो धन धन साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने सानू सतगुरु अगे उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु अगे तरला करना अरदासा बेनती जोदड़ियाँ करनिया दस्या कि भाई जेड़ा गुरु का सिख गुरु का प्यारा गुरु की शरण चा के केवल साध संग की दात प्राप्त मंगते हैं केवल नाम की दात मंगते हैं फिर सतगुरु जी कृपा करते रहमत करते हैं जे आप गुरु तो यह दात मंगांगे फिर सतगुरु कृपा करके रहमत करनगे सेवा तो सिमर की दात संगत की दात ये केवल गुरु की दात शरण चा के गुरु तो प्राप्त होनी है दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावे तिस दे ये दाता गुरु के हाथ में है जिहड़े उन्हूं पा जांदे है ये दात सतगुरु जी उन्होंने बख्शिश करदे ते पावणगे उही जिहड़े आण के तरला करनगे जिहड़े बार बार गुरु अगे अरदास बेनतियां करनगे जे आपां केवल दाता ही मंगी जावांगे दाता तो देणगे उह दाता देण लगे थकते भी नहीं हन अकते भी नहीं हन पर जिहड़ी नाम की दात संग की दात आ ये तरले तो बगैर नहीं मिलती ये जे बार बार तरला करांगे जलों सतगुरु जी देखते कि ये अंदरों जिज्ञासा भाव भी है कि तो मंगता है जितना आप बाकी दाता अपने अंदरों तुर अंदरों मंगते हैं आप इस तरह जे तुर अंदरों ही साध संग की दात सेवा सिमर की दात मंगांगे फिर सतगुरु कृपा करनगे रहमत करनगे धन धन साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां ने कृपा करके रहमत करके सानू पावन पवित्र देह बख्शिश किया है साढ़े हिरदे च वस जाए असी गुरु की शरण च रह के संगत में रह के उच्चा सुचा जीवन बना सकी सेवा तो सिमन की दात गुरु साहब जी तो अपने हिरदे रूपी झोले च पा सकी सो इन बेनतियां प्रवान करनी हुई बेअंत भुलों की आपने खिमा बख्शिश करनी जी।

कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर काल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगम अतोलय

सन्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है, लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है, तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह

ब्रह्म नाद प्रगट होया एक गणक देते एक हिंसा है एक नहीं गुरु नानक दे कंठ तो यह ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है गुरु नानक दे कंठ तो यह पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध एक उस एक दा स्वरूप की है उस एक दा स्वभाव की है उसकी हस्ती की है उसकी समर्था की है सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या और फिर फैसला गुरबाणी का पता है कि एक वस्त बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक अगर उस एक नू समझ जाए तो तू पवित्र है अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए तो पवित्र है नहीं ते सदा ही नापाक गंदगी दी ढेर गलाजत नाल भरे आया मैला महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं कोई बहुत वड्डा दानी है एक दी समझ नहीं एक नाल जुड़िया नहीं ते खुद भी अपवित्र एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है एक दी समझ नहीं एक नाल जुड़िया नहीं इस सेवा दे चवी हंकार ने जन्म लेना है निरंकार ने नहीं कोई जप कर रहा है गुरुद्वारे आ रहा है और तरह तरह दी सेवा दे जुटे होया है ना एक दी समझ ना एक नाल जुड़े है तो मैं अर्ज करा इना सारे धार्मिक कर्मा दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा निरंकार नहीं और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता तो मलीन है वो तो मैला है जो खुद मैला है उदा दान भी मैला जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली है और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है तो सवाल यह पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा यह किवें पाक होवेगा यह किस तरह पवित्र होवेगा तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का एक वस्त बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक एकाग्रता बख्शने एक नू समझे एक नाल जुड़े एक नू जाने ते तू पाक है पवित्र है शुद्ध है जे एक नू तू समझिया नहीं एक नू तू जानिया नहीं एक नाल तू जुड़िया नहीं तो बिन बूझे तू सदा ना पाक मैं फिर अर्ज करा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल पहला अक्षर पहला शब्द एक दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो बाणी आरंभ होंदी है एक तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने अमान है निधान है अनेक है फिर एक है तू अनेक होंदा होया एक है तू एक होंदा होया अनेक है तवज्जा ध्यान बख्शना इति पहली हो गई वो अनेक भी है वो एक भी है वो एक भी है वो अनेक भी है दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है और खुद वो अपने आप विच निरंकार दे तल ते एक है आकार दे तल ते अनेक है निराकार दे तल ते एक है वो सरगुण दे तल ते अनेक है वो निर्गुण दे तल ते एक है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए इनू पढ़न वाले सुनन वाले गाण वाले बहुत आउणगे पर सतगुरु का फैसला ये बाणी बिरलो विचार सी एक कोई विरला विचारेगा और विरला ही अपने सोच मंडल दिच ले आवेगा
ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ

मित्रंतयंत सतरंद्रनंत अनेक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम।

हर हर हर। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमें एहा जात है हौमें कर्म कमाए हौमें एही बंदना फिर जौने पाए। हौमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। वख वख जीवों विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन दा अहंकार किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है और शक्ति सता
ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रब ताक मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती।

सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभै ननासी कह रविदास सभे नहीं सम

ये सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन हम बड कव मैं बहुत वड्डा कवि मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ली फिर दी कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा हुंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी हुंदा है क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता उसमें इतना बोझल नहीं करता एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है अवगुणा ते खड़ा है नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन इक ना नाद ना बेद इकद नू न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान गे रस रस कस ना जानन इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर अखर का भयो ना लहन अक्षर दा कोई बोध नहीं अकल दे तल ते जी नहीं रहा संगीत दा कोई बोध नहीं किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा हुंदा और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन सब मैनू ही देखन चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेड़े तू है जी हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां का मान जोबन जवानी का मान हड्डियां का मान मांस का मान मिंज का मान और खलड़ी का मान इस तो अलावा और है कि एक आया तो इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने करपूर बहुत सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजा रुदर दुर्गंधा
नानक अथ गर्वेण अग्या नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अग्या नड़ो है कि दुर्गंध खून मिंड मास कलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है। जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किस तिसका दिया दरवे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने, उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नु बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लिए बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया। हुण त्याग दा अहंकार, सता कोल है सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा, जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाने लई बनाने हां अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राहीं रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हर नाग कुछ ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते
अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिके और हर एक का माण मैं हो जावा, मेरे से माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां। एक जन्म मरण का कारण बन जाती है तू है, तू है, तू है। एक जन्म मरण को मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर में लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान का रूप बना लेता। मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं, बस तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, ये किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी तो लोग प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है खाना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों दे सिर दे ते ही होंदे। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरा ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरता है। इस वास्ते कहते हैं, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ना भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतनी जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन तिरंजो बेशुमार अरारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नूं जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारिया नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धन दस दिए एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जब उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मना विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन कीना पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारवक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहण लगा हुण असी इस तरह के चोले पहनना छड़ दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहण लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपके दर्शन करा ये नजराना है ये भेट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसी नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन का दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत की
कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों एक इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्यां बैठे हां तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे दे चले हां तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है इतने मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने। खैश जिस घर विच जाना सी गए, आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा किया, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराईदा है। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया है तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ,
दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे उची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई ये गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ ले, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हों कपड़िया की गल, इस चोले की, मैं इसकी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया, जब उस तीसरे घर तो रुखसत हो रहे हैं, कुटिया च पहुंचे हैं, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र ने छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी, ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर कित्थे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटते ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी का लक्ष्य है। और यतन कोशिश ये भी आती है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन की कोशिश की सी, नमरूद ने कह दिता सी, कौन होंदा है खुदा? मैं खुद खुदा हाँ। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तो ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अगे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं,
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਬਕਰੇ ਨੇ ਕੀਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਸ ਜਹਾਂ ਮੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਬ

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता, गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में, रह गई तांते फिकते

लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रूपिंजी जांदी है। जरब

अहंकार तेरे करके ए जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ऐ अहंकार तू तोड़ के रख देना कहीं नू ब्रह्म।

0: कोई बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे बूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनान कर हर हर हरे। है देव, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल? बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पर इसका मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू इतनी औषधि होगी। मैं इतने रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर, कह सब कुछ तो ही है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है, जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पर मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पर प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुर कृपा जय नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। इस तरह तो प्रभु का रूप हो जाए।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 6043258370।